क्या बात है, बहुत धन्यवाद अंकल जी, शुक्रिया थोड़ा, क्या बात है, थैंक यू अंकल जी। तो मेरा थोड़ा मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं चक्ते फटे गाना लाना थोड़े लिए। बीते दिन ही रिलीज होया भाई अमरदीप देवगन होना था, स्टूडेंट महकमा, यूट्यूब ते जाओ सर्च करो अमरदीप देवगन या सर्च कर लो स्टूडेंट महकमा ते गाना आजूगा, सुनो आनंद लो। ते साडे स्टूडेंट वीरां भैणां लई स्पैशल ये गीत अमरदीप ने रिलीज़ किया, अमरदीप ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते रिलीज़ किया अमरदीप देवगन स्टूडेंट महकमा। ते जे तुसीं अमरदीप दे मित्र सज्जण हो, वीडियो बना के अमरदीप नूं भेजो कि अमरदीप थोड़ा गाना बई पंजाबी लहरा ते चल रहा है AM 530 ते आ जाओ फिर।

हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल बादल अते नवे बने श्रोमणी अकाली दल पुनर सुरजीत दरमियान संभावी गठजोड़ नूं लैके चल रही चर्चा दरमियान साबका मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर रतन सिंह अजनाला ने भी एक वड्डा दावा किया है। श्रोमणी अकाली दल पुनर सुरजीत दे अजनाला हलका दे कोआर्डीनेटर डॉक्टर रतन सिंह अजनाला ने कहा है कि अकाली दल ते भाजपा विचकार गठजोड़ लगभग तय हो चुका है अते ओ आउण वालियां विधानसभा चोणां विच अजनाला हलके तो उम्मीदवार होणगे। अजनाला विखे कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्हां दे पिछे लगे भाजपा दे बैनर ने सियासी प्यारियां विच चर्चा होर तेज कर दिती है। कौन निशान अते गठजोड़ नूं लैके नरम रुख अपनाउंदिआं डॉक्टर रतन सिंह अजनाला ने कहा है कि चाहे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी दे कमल दे फुल ते चोन लड़नी पवे जां श्रोमणी अकाली दल दे तकड़ी चोन निशान उते वो अजनाला तो ही चोन मैदान विच उतरनगे। उन्होंने अगे भी कहा कि गठजोड़ तो बाद ये सीट जिस भी पार्टी दे हिस्से आवेगी उम्मीदवार वो आप ही होंगे। डॉक्टर रतन सिंह अजनाला दे इस दावे नाल अजनाला हलके दियां सियासी सरगर्मियां काफी उलझ गईयां ने। उन्हां दे बेटे बोनी अजनाला श्रोमणी अकाली दल छड़ के भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो चुके ने जबकि डॉक्टर अजनाला खुद श्रोमणी अकाली दल पुनर सुरजीत नाल जुड़े हुए ने। दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल बादल ने सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी जोध सिंह समरा नूं हलका इंचार्ज थापिया होया जो कि टिकट दे इक होर मजबूत दावेदार। विदेश जाण ते पासपोर्ट संबंधी एक वड्डी खबर है जो लंघे कल तो लागू हुई है। भारत तो पहले सितंबर तो बाद हुण होर देशां विच जाण वाले भारतीय पासपोर्ट उत्ते इमीग्रेशन क्लीयरेंस की मोहर नहीं लगेगी अते भारतीय पासपोर्ट धारकां नूं ई बोर्डिंग पास ही विखाउणा पवेगा। इमीग्रेशन ब्यूरो ने ऐलान किया है कि पहली सितंबर तो अंतरराष्ट्रीय सफर करने वाले यात्री भारतीय हवाई अड्डियां उत्ते इमीग्रेशन क्लीयरेंस दौरान अपने स्मार्टफोनों उत्ते विखाई देने वाले ई बोर्डिंग पास की वरतों कर सकेंगे क्योंकि इन्हां दस्तावेजा उत्ते फिजिकल मोहर यानी कि स्टैंप लाने की प्रक्रिया नूं पूरी तरह बंद कर दिता। गृह मंत्रालय तहत काम करने वाली इस एजेंसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स उत्ते महत्वपूर्ण जानकारी सांझी करदिआं कहा सी कि इस कदम का मतलब घट कागज की वरतों अते वधेरे आसान यात्रा बनाउणा है। BOI ने अपनी पोस्ट विच कहा है कि पहली सितंबर तो अंतरराष्ट्री यात्री डिजिटल हो सकते हैं क्योंकि हुण ई बोर्डिंग पास स्वीकार किए जाएंगे। अंतरराष्ट्री यात्री इमीग्रेशन क्लीयरेंस दौरान अपने स्मार्टफोन उत्ते विखाए गए ई बोर्डिंग पास की वरतों कर सकते हैं। इस तो इलावा फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन ट्रस्टड ट्रैवलर प्रोग्राम विच दाखिल यात्री भी ई गेटा उत्ते इन्हां दी वरतों कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि फिजिकल बोर्डिंग पोस स्वीकार किए जाएंगे पर उन्हां उत्ते स्टैंप नहीं लगेगी। श्री अकाल तख्त साहब के पांच सिंह साहबान वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान खिलाफ मानदास सिख संगत उत्ते हुण तक कोई ज्यादा असर नजर नहीं आया। पंज सिंह साहबान वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान खिलाफ 15 जून श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो गुरु दोखी अते पंथ विरोधी करार देने वाला फैसला दिता गया सी। इस दे नाल ही संगत नूं भी हुक्म दिता गया सी कि वह कोई सहयोग ना देन। इस हुक्म दे जारी होने तो महीने बाद भी हुण तक एक भी अजिही घटना सामने नहीं आई जिथे मुख्यमंत्री नूं संगत दा सिद्धे रूप विच पहला वांग ही लोकां नूं मिल रहे ने अते लोक भी बतौर मुख्यमंत्री उन्हां नूं उसे तरह मिल रहे ने। इस संबंध विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

सुनने वाले सारे श्रोतियों को बहुत बहुत प्यार आदाब सत श्री अकाल ते नमस्कार। उम्मीद करते हैं तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला दे छोंगे, आज की खूबसूरत शाम को इंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 9:09 हो चुके हैं, थोड़ा सा साथ होने तो लैके 10 बजे तक बने रहना। सो 10 बजे तक बड़ी ही खूबसूरत गल्लां बातें करनियां, बड़े खूबसूरत स्नेह और बड़ी गल्लां बातें। 905-673-3337 905-673-3337 स्टूडियो का एक नंबर। सो बहुत सारिया गल्लां बातें, बहुत सारे स्नेह ने, बड़िया सारिया अज थोड़े नाल गल्लां बातें करनियां, क्योंकि काफ़ी दिनों तो गलबात नहीं हुई सी। सो काफ़ी वक्फे के बाद कल असी गल्लां बातें थोड़े नाल कीतियां सी, बहुत सारिया कॉल्स थोड़ियां रह गईयां, बड़े सारे सुनेहे थोड़े रह गए। सो अज बहुत सारिया गल्लां बातें, सो उहदे लई नंबर इक्को ही है 905-673-3337 905-673-3337 ते गल्लां बातें हो सकदियां ने। सो जुड़े हो रेडियो प्रोग्राम उड़ान दे नाल AM 530 तों प्रभ संत दे नाल।

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड, यूनिट 2, ब्रैम्पटन, ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते, जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स, सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगो शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड, साउथ ब्रैम्पटन, या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते। एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड, साउथ ब्रैम्पटन।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप द नाम एक है वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप पला अते करण शर्मा नु कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे एरन मिल्स एक्यूरा 9058285800 9058

टीम फॉर एंटरटेनमेंट पेश कर देंगे पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: Bramble Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनिया तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

आज खूबसूरत लोग खूबसूरत मोमेंट्स ये चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो आप सब दा हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। पीरसन द ट्रैक 6 जिथे यूनाइटेड एयरलाइंस अपनी उड़ान भर चुकी है उत्थे ग्रे स्काइज दे नाल जो ड्रिजल हल्की बूंदाबांदी कुदरत की बिना जानिए वड्डा बेपरवाह उस वड्डे बेपरवाही की कुदरत का धन्यवाद करती हुई नज़र आ रही है। स्लिपर कंडीशन ने थोड़ा जहा एक्सट्रा टाइम लैके चलोंगे, ट्रैफिक दे विच स्मूथ पर लिटल स्लो दे नाल इस समय रश आवर दे विच टोरंटो सानू तुसी डिजिटल एएम फ्रीकुएंसी राही आकाशवाणी दे लहरां दे तहत रेडियो आवाज़ नू सुणदे हो। मैं हाँ अमरदीप सिंह बैनीपाल, साडा तुहाडा साथ अप्रोक्सीमेट अराउंड 15 साल का हो चुका है। ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर दे विच रेडियो दे विच आकाशवाणी दे विच तुसी मैनू सुणदे हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने एक दूसरे नू देखिया नहीं उन्होंने विचों मैं भी हाँ, पर मेरी आवाज़ नू महसूस करदे हो आप सब का बहुत धन्यवाद। कि जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है, अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतज़ार है, भूखे को रोटी का बेकार को रोज़ी का इंतज़ार है। इंतज़ार शामिल करदे हो हर रोज़ तो जिंदगी दी रेल भजी जा रही है कि जग जंक्शन रेलों का गड्डी का विक जाए कर नूने सांभ लिया तुर गई धी चाड़ के पल्ले पोते ने जन्म लिया बाबा सिव्यां दे वल चले। किते मकाना ने किते जन्मदिन मनाए जा रहे ने किते कुछ हे मन तू उस परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा कर हर समय हर क्षण हर मिनट

0: ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲ ਫਾਸਟ ਨੇ, ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-524-3535, 416-524-3535, ਵਿਦੇਸ਼ ਆਬਰਾ ਫਰੋਮ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।
1: Namaskar, Sasikal, main aapka Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mataji Chowki.
2: Maan tu badhaya mera dukh sare taal ke.
1: On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hoon ki ye shaam म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी। हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है। सो गाइज, सी यू ऑन 4th September।
3: लो जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड, 905-456-9900। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश, खरीदिए GTA में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
4: दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮ ਮਨਸਾ ਜਨ।
5: ਟੋਰਾਂਟੋ, ਗੈਟ ਰੈਡੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੀਅਲਟਰ ਰਵ ਸਿੰਘ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, A to Z ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ।

0: This September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए पाँच बाहपा वे आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1115।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमाल लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
4: आज खुश तो बात होगी
5: ओ ता होना ही है जदों ढिल्लों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तैं लगता बनदा ही है।
4: आज मेरे पास बिल्ली है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
5: बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी, लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले ढिल्लों वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
6: क्यों कह रहे हैं यहाँ पर?
5: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
5: पर ढिल्लों वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिल्लोंवीडियो.com। होर कोई सेवा?
8: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection Upper. To see cheap flight tickets si pal de vecho Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan tusi visa services di pal de vecho puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection Upper.
9: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
10: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
11: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी। ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीयां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900।
1: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ।
2: ਵਾਰੀ
1: ਪਾਠ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ 300 ਸ਼ਬਦ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ। ਯਾਰ ਪਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 905-204-1313 905-204-1313 905-204-1313।
2: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
2: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे मुर्दबारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट
2: 6473393521
1: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
2: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चल

0: एक चक्कर लगाओ।
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है, अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
4: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
0: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
4: 9055-64-6444।
0: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। चलो AM 530 तो।